मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्सियों प्रगट

असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

नाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा।

जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग।

किस्म की बाजी है, तो जो चाहे लगा डर कैसे, अगर जीत गए तो क्या कहना, अगर हारे भी तो बाजी मात नहीं।

0: perfect food storage solution, Satco Food Containers. The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with International Siddhashram Shakti Centre on Saturday, 10th October at Harrow Leisure Centre, Harrow, HA3, 5BD. Join us for a joyful celebration of music, dance and devotion.
1: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.
2: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
3: वाओ, आटला स्वादिष्ट मठिया ने घोघरा शू घरे बनाव्या छे?
4: ना रे, आ तो शायोना माथी लाव्या छे.
3: वाह, तो आ मिठाई ने फरसाण पण शायोना ना ज हशे ने?
4: हाँ, बिल्कुल.
5: सेलिब्रेट द फेस्टिव सीजन विद शायोना. एंजॉय क्रिस्पी मठिया, डिलीशियस घुघरा, सेवरी फरसाण एंड माउथ वाटरिंग मिठाई. विजिट शायोना शॉप्स और श्री स्वामी नारायण मंदिर नीजडन. ऑल्सो अवेलेबल एट सिलेक्टेड मॉरिसन्स, सेंसब्रीज एंड टेस्को स्टोर्स और शॉप ऑनलाइन एट शायोनाuk.com. शायोना, स्वाद जे तेहवार ने बनावे खास.

0: मेरी तुम।
1: एंड टुडेस सॉन्ग इज चुरा लिया है तुमने जो दिल,
2: ओए होए होए,
1: नजर नहीं चुराना सनम।
2: अब हम क्या हो?
3: Hi, good morning.
2: Hi, Mahi.
3: How are you? It's a very long time. It's my year. I think आज का गाना है.
2: Yeah, आज का गाना.
3: चुरा लिया है तुमने जो दिल को.
2: दिल को.

कितना अच्छे गाते हैं सारे लोग, तुम लोग काम छोड़ो, हम चलते बॉलीवुड, पैसे बनाएंगे, 300 रुपए का एक गाना. Wait, 300 rupees, that's like £2.50, bro. How am I going to live on £2.50? Cost of living, Sonia.

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London. 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
1: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
2: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
3: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
1: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Releasing nationwide by Zee Studios.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
0: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
8: Next, Kush on the Mid-Morning Show.
9: On Leica Radio.
8: London.

07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस

Godfather and Co. Bar and Kitchen Co. Service excellent, food amazing, और experience ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी recommend करेंगे. Vivek House, Watford. Book on WhatsApp 07.

0: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में।
1: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
0: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947।
1: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116।
0: दिवाली का जश्न अपनों के संग।
2: Surinderella is back for 2026. Rivko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it in a London theatre near you. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is...

0: Surinderella, radio partner Laika Radio. लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
1: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
0: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
1: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
0: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
1: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
0: टिकट बुक करो सेगा लंदन.co.uk।
1: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग.
2: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा.
1: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स.
2: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM.
1: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896-680-920.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
6: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
7: This Halloween, you'd be bats to go anywhere other than Aldi. There's everything from Cadbury's Heroes to Swizzle Sweet Tubs and British Pumpkins, perfect for carving. Sink your fangs into trick-or-treat essentials from 39p. So, after dark, fly to Aldi!
8: Hi, clairvoyance here. How may I be of prediction?
9: I'm wondering about my future retirement.
8: You and me both. Well, I'm seeing an app. The HMRC app. You open it and there it is. Your state pension forecast.
9: What about gaps in my national insurance record?
8: Well, you can see and fill those. Oh, and it's handy for tax refunds.
9: Right, thanks.
8: The pleasure's yours. Now download the HMRC app for your money and tax. You're on it.
10: Craving the taste of home this festive season?
11: Enjoy curries, chole bhature, vada pav, raj kachori, mithai, special desserts and more at Haldiram's first London restaurant.
10: Visit Haldiram's in Leicester Square, London today. Haldiram's.
12: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
14: Laika Radio.
15: Time to reload with Vish. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जिंदगी वहां सैको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स.
1: यस, वी आर इन द फाइनल. आई नो, आई स्टिल कांट बिलीव इट. वी आर एक्चुअली गोइंग. फ्लाइट्स बुक्ड, टिकट्स सॉर्टेड, बट हैंग ऑन, हाउ आर वी गोइंग टू यूज आवर फोन्स ओवर देयर? वी विल नीड देम फॉर टिकट्स, मैप्स, फोटोज एंड ऑब्वियसली सेंडिंग द सेलिब्रेशंस होम. सिमजी, डेटा इन 220 प्लस डेस्टिनेशंस विद 4G एंड 5G वेयर अवेलेबल एंड वी कीप आवर नंबर फॉर व्हाट्सएप एंड बैंक OTPs.
2: एग्जैक्टली. फ्लैट रेट, नो बिल शॉक एंड रेडी इन 3 मिनट्स.
1: कम ऑन, लेट्स गो विन दिस.
3: सेव एन एक्स्ट्रा 10% विद कोड ROMFREE10. सिमजी, पावर्ड बाय लाइका मोबाइल. चेक इफ योर फोन वर्क्स एट simzi.com. टर्म्स अप्लाई.
4: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
6: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
7: नहीं बेटी के लिए जस्टिस चाहिए.
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
6: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
6: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
9: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
6: Releasing nationwide by Zee Studios.
10: Something new has just landed at Cakebox. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized Cakebox straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cakebox celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
11: ICICI Bank Money to India, which is trusted by millions across 16 countries, is now in the UK.
12: Wow! So, sending money to India is instant?
11: Yes, from any bank in the UK to any bank in India. Real-time exchange rates, round-the-clock support. Not only this, we also get a preferential rate and zero fees on our first 5 transfers.
13: Download ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store. ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply.

0: the end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion. In cinema, 2nd October.
1: Because the story has not been finished yet. The last part is left.
0: Released by Zee Studios nationwide.
2: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
3: Yes, Bebo. Catch kya hai? Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
2: I still can't believe it. No catch.
3: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Green Street, East London and Broadway, South Hall.
4: Sunshine, skyscrapers and souks.
5: For less than you think. This is Affordable Dubai from South Hall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: South Hall Travel. Pay less, enjoy more.
5: South Hall Travel at all protected.
6: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग.
7: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा.
6: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स.
7: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM.
6: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896-680-920.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
9: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स your travel mantra.
10: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
11: Hi, this is Kush. Catch me on the mid-morning show Monday to Friday from 10 AM to 1 PM. And make sure you're ready for your Mystery Wars, your 2090s and your Anthakshri. Keep it Kush on Leica Radio, Greater London.

0: Mamster no panipuri ane panipuri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: Hello everyone, this is Mamta Sharma and you are listening to my favorite one and only my girl Radio Wali. Radio Wali is bringing you all the good vibes. So stay locked